0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में के दक काफुंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडा हिं कमेन ने अफन तिकन कोलन ना
1: तिकु दुं हाउ द हाई रंगल ले तिहं मुन्ना आइ कही आ हाल बला फे मुन्ना सकां कां को देन ना हेदी मुन्ना वरहा उपावे

0: शुक्रिया इसी बड़ा का तुम धन्यवाद।
1: आदि सिपांग लवा हनुमा एकेगा उरी हा सिपांग ऑफिसर मे द रस्मियत का बैर डैन वा सिपांग ऑफिसर मे शिंद बड़ा गते हिन मिसराइस तो जमुहुरी आदेश मड को लवा हुंडवी कुरनिस अशेगा मिहार मे कुरिया दनी मे रस्मियत निम्मुम के इजने यंग एदे रिपोर्ट कुरुम मे फहर वेस मे रस्मियत के इजने यंग एदे मे रिपोर्ट कुरनी मे रस्मियत के मेहतर दरअसल जमहूरिया इज़न देव माइके का मिहा हिसाबों में है रस्मियाँ तो नीमो मकब में आई
0: आधे हद्दी हदे अधि हद्दी तिम्मन असासी तमन्न को होगी दरिवरुं सिफ़ेंगे हुआ कुरुमा बड़े हवाल कुरुम के रस्मियाँ तो बड़े अगेन देवी थी एम्मी हाँ बेफलों ना शुक्र दर नवन एम्मी हाँ बेफलों ना वरा उफावेरी बाज़वेरी दुआ कंगे दें Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: आदे गेर फुशी हेवकम के मैदानोगा अमिया दुमी कुरियत दिए हद्य हद्य आदे हद्य हद्य मन असासी तमरेन को होगे दरवरुन हुआ कुरुमा दरवरुन ना बड़े हवाल कुरुमा बेबी रस्मियात मी रस्मियात का मी देबिच के दरवरुन हिमने हिं जुमला दुई सत्ता फंसास फस दरवरुन बैवरी भी ए साड़ी स्टिंग अंहें दरवरुन ना दुई सत्ता बार फिर हिं दरवरुन एक मी रस्मियात शर फिर को देवी राज्य इसे तेरा इसल जमहूरिया हदी सिफाएंगे एम एम Tiberia, Dr. Muhammad Muizu, Egiturum, Defense Minister, Adi Chief of Defense Force, Adi Vice Chief of Defense Force, Hami Rasmiatka, Barrio Danavi, Hamiake Sifange, Ginade the Officer of Miss Mirasmiatka, Barrio Danavi. आधे में खास रस्मियत होने में क्या मिलती है दूसरे तफंसास फस दरवारों सिफ़ेंगे हुआ कुरुमा एकीगा में हुरिहा दरवारों गे सम इस उफुला लगें तीबी इरो आर्गन में नमी फेन्ननी ए दरवारों के मोन मतिंग हम काउमी जोश काउमी इरो आदि फावेरिकम मी खास रस्मियत प्याह साबों ने मम कम ये मी रस्मियत हिंगा मुंदिया गोतु के आडो देवराज जाय आडो के हुन तेरे ना हमी मी गेनेस्तिनी आरुं फातमत सीनत मी रस्मियत गेनेस्तिनम गाडो ना टेक्निकल गोतुंगे हेतर वेदेनी आदि वहीद मी हाय साबो मी लाइव कवरेज नि मालाफा देवराज जाय गाडो के स्टोरी हवाल कोलान
2: कल दिन में आर्गुमेंट में फुना हमें मी गेनेस्तिनी सिफेंगे हाइती देवन देवन आदि हाइती तिमणा ससितम रेन कोस निम Bavarina, Hua Kurma, Adihaval Kurma, Girfushi, Hevikam Gamatanoga baby, Rasmia Tingamandia good Kadwagoto. We are getting Havir first cuddy, a minute fun sas, 10 seconds to be first something in the Vira Chegado. Algon Menge program the Hamaji for Gotun thing, Migadi government to be fun again as Tini spill the tea.
3: Spill the tea.

था त्यबै मी हुंगे मेदुगा बात लुगतुगा नुकाशे अदि त्यबै मी हुं देन तिबिगेम में फाफ रिगतुगा मी सकुंगे मुदाता हो गेते रे बाय के मट्टका ए मुदाता एबही ए मुदाता कुं बाय हाके मुन्न नुदेशे रिश्वत की एम्मे नुबैगतुगा मी हुंगे मुदा बेनु कुरमे एई हकुनुं गोतका कमे कुरमा तिमागे मुदा हेद कुरातिये अदि ए मुदा बेनुं कुरेवेनी एहे मीहेगे हक्को निगुळागतु मक्कम वातिये रिश्वत दे मीहाया ए हिफा मीहागे नुबाकं एवरे कीर्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवाफावा बसुळुगे माना गवे रिश्वत दे मीहाया रिश्वत हिफा मीहाया एकमं हेकिवे ए लिया मीहाया लअनें हुट्टे लअनें लेवमकी मैं अल्लाहुगे रहमतुं दुरु कुरेवुमे बड़ी तिफाफत तक मेनवी मैं अल्लाह लाने नुलवते।

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআন হবে আলা ওয়া ইন্নী উতীতুল কুরআন ওয়া মিছলুহু মা মানে দন্নাশে আদি হামাকাশওয়ারুম তিমান রাসূলা ইবানি কুরআন দেবি ফাই আদি ইয়াইকু হাম ইফাদা এহেন এচবস দেবি এবহি একলে গফানগে সুন্নতে
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೆಣಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಬಗುತುಕೆ ಪಂಗ್ಯ ಪಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: हांगार अंगार दो मिंदुर कुरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे देगड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मिंदम पार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू कामिया पिये फारवेरे का वाम बेनुं ता कामिया पिये फारवेरिंग गातों इरुशाद हो दं बेनुं ता व्यवहार फुरा कुरम बेनुं ता
0: वुन दंकार
2: कम में होनी हिरु दोएगे हिंदुनु नो गिट फन रहेगा रिपीट होनी हिरु दोएगे हावीरु हाथरु गिट फन रहेगा आदि आदित्य दोएगे हावीरु हाथरु गिट फन रहेगा
0: इंगा सत्तर से एक साढ़े सौ एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डे नौ मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: हम एक नई दिव्य राज्य के आदम
1: राज्य के कोम हिसाब के घोरी के बस एवज आगे देखो मकानों ला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाड़ो हाला बलालम फंसे हैं गोते
3: पीएसएम एआ
4: दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो आदि दिवे ही एफएम बस आड़ो हाल वेने
1: टीवीएम यस टीवी आदि पीएसएम न्यूज़ बलालम
3: पीएसएम एआ
4: iOS आदि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करवेने
1: पीएसएम एआ
4: आवाहा फोन डाउनलोड करवा
5: अंगादी उंगनादी मुनिफोई फिलवा दिनुमुगा
6: थेदुवेरी कमायको
5: एकुवेरी कमायको
6: एरुवेस मिहारुवेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम मेगातुगा दिवेहराज्य के आडु
5: इंहा सतरस्ते कसाली स्नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड